0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खर बोलणाऱ्या आणि स्पष्ट बोलणाऱ्या व्यक्तीला कदाचित काही वेळेला खूप मित्र नसतात, पण चांगले मित्र नक्की असतात। अत्यंत प्रामाणिक माणसांच्या सहवासात प्रामाणिक माणसं राहू शकतात, जिथे असत्य अप्रामाणिकपणाला बिलकुल थारा नसतो। प्रामाणिक माणसं ही कोणत्याही परिस्थितीपुढे न झुकता आपल्या स्वतःवर ठाम असतात। सत्यावर त्यांची नितांत श्रद्धा असते, सत्यमेव जयते हा त्यांचा आदर्श असतो। अशा इतक्या प्रामाणिक, सत्यवान आणि स्पष्ट बोलणाऱ्या माणसांच्या सभोवतालात खोटं नाटं लबाडा करणाऱ्या अशा माणसांना किंवा खोटं धडधडीत खोटं रेटून बोलणाऱ्या माणसांना थारा नसतो, स्थान नसतं, दूरवर दिसत नाहीत। त्यामुळे खरं बोलणाऱ्या स्पष्ट बोलणाऱ्या अशा व्यक्तींना भले खूप मित्र नसतील, पण चांगले निष्ठावान मित्र नक्की असतील, असे सोबती नक्की असतील। आणि हे सत्य आहे, त्रिवार सत्य आहे, हा अनुभव तुमचा सुद्धा असेल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स एट 20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य जरूरी उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन भागीदारी से भाग्योदय लक्ष्य के तहत आयोजित किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने

कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स एटी लचीला नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने इसके लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।

0: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। टू डे मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuanket Kyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato' Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
4: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
2: With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Directorate General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CSTR.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: गुड मॉर्निंग, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है 107.1 FM रेनबो और आज के सितारे इस सेगमेंट में मस्त मुंबई ये कार्यक्रम लेकर मैं आपका मनमीत आर जमीद आप सभी को कहना चाहूंगा तहे दिल से गुड मॉर्निंग। यस, कहीं मत जाइएगा, बने रहना FM रेनबो पर हमारे साथ बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स। आज के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे कुछ बातें, कुछ गाने और साथ ही साथ 10 बजे एक इंटरव्यू के बाद फिर गाने। तो इस सफर में आप हमारा साथ निभाने के लिए तैयार तो है ना? जी जरूर रहेंगे। आइए आगाज करते हैं इस प्यारे से गाने के संग लता मंगेशकर की आवाज है बाहरों के सपने फिल्म से अंदाज। गुड मॉर्निंग मुंबई।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलोगे संग सचिन दा का ये संगीत आज के मॉर्निंग तो बना रहा है किशोर कुमार की आवाज के संग, मगर मुझे लगता है कि तीन देवियां फिल्म का ये गाना अगर मैंने आप सभी के लिए प्ले किया तो मैं भी देखना चाहूंगा कि हमारे संग कितने सारे श्रोता जुड़ चुके हैं। भाई जल्दी जल्दी बताओ 8657661071 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। वैसे देखने जाए तो आज पता है 1908 की अगर बात करें ना तो आज के सितारे में हम सबसे पहले राइट बंधुओं को जिक्र करना चाहेंगे और उन्हें याद करना चाहेंगे क्योंकि 14 मई ये वही दिन था जब उन्होंने हवाई सफर कराया था। विल्बर राइट ने अपनी साइकिल कंपनी के मैकेनिक चार्ली फर्नास के साथ अमरीका के नॉर्थ कैरोलिना स्थित किटी हॉक से उड़ान भरी थी और पता है 28 सेकंड में कितने उड़े थे 2000 फिट, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे है ना। एक मशीन में बैठकर उड़ना और ऊपर से पृथ्वी को देखना सबके लिए रोमांचित करने वाला अनुभव होता है। इस जमाने में इस खबर ने एक लोहे की मशीन आसमान में उड़ेगी ये बताकर लोगों को काफी रोमांचित कर दिया था, लेकिन वो सफर आज के जैसा हाँ आरामदायक तो नहीं था। मगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने सबसे पहली बार किसी फ्लाइट से उड़ान भरी थी तो आपका वो अनुभव कैसा रहा बताओ। राइट बंधुओं ने तो करामत कर दिखाई, मगर एक सफर करने वाले यात्री के तौर पर आपका अनुभव कैसा रहा जल्दी हमें बतलाए। तब तक सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गाया ये अंदाज़।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों 9:01 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम आपका मनमीत आरजेविद के संग, जो अक्सर कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। और आज जो हमने अवसर ढूंढा है, गुरुवार का दिन है, 14 मई ये तारीख है। वैसे बहुत सारे लोग हमारे संग आज के इस शो में जुड़ रहे हैं, जिसमें प्रमोद चिंचलकर अकोला से हैं, प्रणव शिंदे, प्रकाश शिंदे, गणेश पाटिल, महेश भाटकर, फिरोज सिकांत पुरिया, विजेंद्र घटोल, रजनीकांत पाटिल, वासुदेवन हैं बदलापुर से, पंकज मोहर, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से हैं, वैष्णवी खुटले, सुरेश पावकर, वसंत कुलकर्णी, इन जैसे बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। अगर आप भी हमारा शो सुन रहे हैं तो 8657-661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ कुछ ऐसे सदाबहार गाने। बने रहना एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई में आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: मनु मनोज फिरोज सिगान बोरिया पंकज मोड़ है राम नितिन ढोकने जी पूनम ढोकने जी और बहुत सारे नए श्रोता हमारे संग जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। वैसे देखने जाए तो देखिए हर दिन हमारे लिए बड़ा खास जरूर होता है, मगर कभी दिन की शुरुआत अगर ऐसी न्यूज़ से हो जाए कि यार मोबाइल के लिए मामा ने भांजे को ही मार डाला, हाँ आपने कुछ गलत सुना क्या? नहीं नहीं मैंने सही ही फरमाया है। सुर्खियां बटोरने वाली ये बात जो है जब मेरी नज़र में आई तो मुझे ऐसा लगा यार ऐसी क्या बात हो गई कि हम मोबाइल के आदि हो गए।

हम तो कहते हैं कि हम स्मार्ट हैं, मगर फोन अब स्मार्ट हो गए और लोग पागल हो गए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या हम सभी ने आज के जो सितारे हैं, भविष्य हैं हमारे देश का, उन्होंने फोन को ही अपनी जिंदगी मान ली है? बताइए आपकी क्या राय है इस बात पर, क्योंकि सुबह सुबह ये न्यूज पढ़ के मेरा दिल बहुत दुखी हो गया कि यार फोन के लिए दिल हार बैठने वाले हम सभी इतने पागल कैसे हो गए, क्यों हो गए? बताइए आपका मन क्या कह रहा है 8657661071 पर। तब तक आप सभी को सुनाना चाहूंगा एक ऐसा गीत जिस गीत के साथ आशा भोसले और दिलराज कौर हमसे कहने जा रहे हैं कि मौसम मस्ताना है, इसी मौसम को मनाओ मस्त मुंबई में आपका मनमीदार जैमिन के संग FM रेनबो पर।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं भैया अपने अपने हिसाब से हर कोई फोन इस्तेमाल कर रहा है, अगर फोन ना हो तो शायद हमारी जिंदगी अब रुक सकती है। यस, ये बात भी उतनी सही है क्योंकि हम सभी डिजिटलाइज दुनिया में कुछ इस कदर फोन के साथ जी रहे हैं कि फोन के अलावा कभी कभी हमारे काम होते ही नहीं हैं। अब देखिए आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी मैं फोन पर ही जो पढ़ रहा हूँ, है ना। बट मुझे ऐसे लगता है कि फोन के पीछे या मोबाइल इस गैजेट के पीछे अगर हम इतने दीवाने हो जाएंगे तो शायद रिश्तों की अहमियत कम होती चली जाएगी। कल हमारे बगल में बच्चा रहता है छोटा सा नन्हा सा, मुझे कहता है कि यार टाइपिंग में आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, हम टाइप करते रहे, एक दूसरे से कुछ चैट करते रहे, और वो हर बार ओके को सिर्फ के लिख रहा था और थैंक यू को टी क्यू लिख रहा था। मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले आपको समझता नहीं अंकल, अगर आप ओके को के और थैंक यू को टी क्यू लिखोगे तो अगले 20 सालों में आप अपनी जिंदगी के 2.5 मिनट बचा सकते हैं। अब देखिए ये कैसी सोच है इन छोटे छोटे बच्चों की। यस 5G का जरूर जमाना है, फिरोज सिगानपुरिया कह रहे हैं। और हमारे एक और श्रोता है अधिवक्ता जो है संदेश नाई जी, वो कह रहे हैं मराठी में कि तंत्रज्ञाना ने अंतर कमी के लिए पण अनेक ठिकाणी मनांमधील अंतर वाढवले। ये बात तो है ना, पहले के जमाने में फोन के वायर से हम सब बंधे हुए थे, मगर अब मोबाइल से हर कोई कनेक्ट हो चुका है, बट हमारे मन डिस्कनेक्ट सच में हो गए। संदेश जी सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता है मनोज जी, वो कह रहे हैं कि इससे दूर भागने के लिए हमें कुछ अलग चीज़ों में खुद को व्यस्त करना है, जैसे कि एक्सरसाइज हो, चलना हो, फैमिली के साथ समय बिताना हो या अन्य कई सारी चीज़ें। अब देखिए हर किसी की अलग अलग सोच है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मस्त मुंबई इस कार्यक्रम में आज के सितारे में अगर हम इन छोटे छोटे बच्चों की अगली पीढ़ी की बात करें या इन सितारों की बात करें तो ये कहाँ जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा गौर से देखना होगा यार। और अपनी आंखों के सामने जो पर्दा है उसे हटाना होगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। अब देखिए, मोबाइल जो है उसके आदि तो हम हो ही चुके हैं। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है, मोबाइल से हम कनेक्ट रहते हैं बट एक दूसरे से मिलते नहीं है। दिलीप वाणी जी कहते हैं, है ना। साथ ही शुभदा जी कहती है कि मैं फ़ोन के बिना रह नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा जो है आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो रोज़ वीडियो कॉल के ज़रिए मैं उसे खुद ये महसूस करती हूँ कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है। जी, आपने गलत तो नहीं कहा है, बट देखिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करना क्या होता है, या फिर हमारे पास जो नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल करना क्या होता है। अब देखिए, आज तारीख है 14 मई 1984 की मैं बात कर रहा हूँ। अमरीका के न्यूयॉर्क में डाब्स फेरी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं मार्क जुकरबर्ग। अपने सही पहचाना है, दुनिया को फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म देने वाले मार्क जुकरबर्ग आज ही जन्मे। 20 साल की उम्र में उन्होंने इस ऐप की शुरुआत करी थी, लेकिन ये

इतने कम उम्र में इस बच्चे को ये बात कैसे सूझी होगी, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा ना। मैं यही कह रहा हूं, कभी कभी गैजेट्स हमारे हाथों में होते हैं, बट हमारे ज्ञान से अगर हम उससे भी कुछ इनोवेट करने की कोशिश करें तो शायद दुनिया से अलग काम हम जरूर कर सकते हैं। नहीं तो हम उस गैजेट को इस्तेमाल करने वाले एक ऐसे इंसान बनेंगे, फिर पता चलेगा कि हम गैजेट नहीं, गैजेट हमें इस्तेमाल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ही देर में और कुछ गानों के साथ ये बात जरूर आगे बढ़ेगी, मगर मैं कहना चाहूंगा अपने मन की बात सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आशा भोसले की आवाज में गाया ये गीत सुनने के बाद पता चलता है, जो साहिर साहब ने बात लिखी है कि हमारा मन ही दर्पण कहलाए। तो मन की बात सुनिए, क्या कह रहा है आज आपका मन गुरुवार के दिन। मस्त मुंबई में आरजे अमित को जरूर बताइए।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आज के सितारे में अगर हम बात करें कुछ और सितारों की तो मुझे मानुषी छिल्लर ये भी जरूर याद आ रही हैं। आपको पता है मिस वर्ल्ड 2017 के अंतिम प्रश्नोत्तर का दौर चल रहा था। जज ने पूछा दुनिया में सबसे अधिक वेतन किस पेशे को मिलना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया मां को। हम सभी जानते हैं फिर आगे क्या हुआ। इसी युवती को मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया और वो कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी अभिनेत्री और मॉडल मानुषी छिल्लर है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली मानुषी का आज जन्मदिन है। बॉलीवुड में भी उन्होंने एंट्री ली है। आपको पता है ना सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ऑपरेशन वैलेंटाइन, इन जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स में हमें ये अभिनेत्री के तौर पर जरूर दिखाई दी। हालांकि वहां वो उतनी सफल नहीं हो पाई, बट फिर भी सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव हैं और अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को अपनी मुरीद बनाती रहती हैं। इन्हें हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और जल्दी बताएंगे कि किस तरह आईपीएल में आज के सितारे में एक सितारे का जिक्र हम जरूर करेंगे। कौन है वो आप बताओ। चलो ठीक है, कल की अगर मैच आपने देखी होगी तो आप सही चुन सकते हैं उसे सितारे को। फिलहाल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाया हुआ ये अंदाज यादों की बारात फिल्म से। बने रहना एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई में आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Rainbow 107.1 megahertz, musically yours.
2: 9:45 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई। और फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए।
3: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,
3: EKYC,
4: NEFT, RTGS,
3: IMPS,
4: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
3: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
4: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
3: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी के FM रेनबो पर ठीक 10 बजे आप समाचार सुन पाएंगे और समाचारों के उस पार आप सुनेंगे एक इंटरव्यू विद पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर N. राजामी, इनके साथ। तो हम चाहेंगे आप FM रेनबो पर बने रहे और सुनते रहे आपका पसंदीदा कार्यक्रम।

9:46 मिनट हो चुके दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM पर मास मुंबई, और मास मुंबई अब आखिरी पड़ाव तक आ पहुंचा है। बट देखिए, पंचमदा का हमने यादों की बारात फिल्म का गाना प्ले किया, और आज कोइंसिडेंस इतना जबरदस्त है ना कि उन्हें अपने करियर में सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड जिस फिल्म के लिए मिला था ना, उस फिल्म को आज कई साल पूरे हो चुके हैं। प्रणव शिंदे हमारे एक ऐसे श्रोता है जो इन सभी छोटी छोटी जानकारियों को हमारे संग साझा करते हैं। सनम तेरी कसम, ये 1982 में आई थी फिल्म, ये फिल्म आज 44 साल पूरे कर रही है। तो हम चाहते हैं सनम तेरी कसम फिल्म का एक गाना हम जरूर आपको सुनाएं। बैक टू बैक एक और गाना आएगा जो कि हम कल के मैच में सेंचुरी लगाने वाले जबरदस्त खिलाड़ी और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाले, 9 शतकों का रिकॉर्ड IPL में बनाने वाले हमारे विराट कोहली के लिए प्ले करेंगे। कौन सा होगा वो गाना जल्दी पता चलेगा। फिलहाल सनम तेरी कसम के इस गाने की ओर आप सभी को ले जाएंगे। ठीक 10 बजे आप हिंदी में समाचार जरूर सुनिएगा, और समाचार के उस पार इंटरव्यू होगा पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर NRaja मिसर के साथ। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत RJ अमित के संग।

ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार सुनना मत भूलना। और समाचार के उस पार 10:02 पर पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर एन राजम जी की इंटरव्यू। और उससे पहले एक निवेदन, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए https://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी 8252446702, पासवर्ड au779#157 इस प्रकार है। और अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री कल से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। समाचारों में आगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का हवाला दिया। समाचारों में आगे, सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और समाचारों के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी के अंतर्गत गुरुवार 7 मई 2020 को दादर स्थित स्वतंत्र वीर सावरकर में आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में सुर गौरव संध्या नामक कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम का संपादित अंश अब आप सुन पाएंगे। पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर राजम इनकी इंटरव्यू जैन पत्रकार द्वारा, साथ ही पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर राजम इनका वायलिन बजाया हुआ भजन भी आप इसमें सुन सकते हैं।
2: आकाशवाणी मुंबई केंद्र के प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत गुरुवार 7 मई 2026 को दादर स्थित स्वातंत्र वीर सावरकर सभागार में आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में सुर गौरव संध्या नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की प्रमुख प्रतिभागी थी पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर एन राजम। आइए अब सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम का संपादित अंश। सबसे पहले प्रस्तुत है जयंत पात्रिकर द्वारा लिया गया पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर एन राजम का साक्षात्कार।
3: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी 90 इस अवसर पर और इसके अंतर्गत आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूँगा। अम्मा जी, आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारम्बार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
4: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे

0: गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आकाशवाणी 90 के अंतर्गत ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ है, और इस रेफरेंस से, इस संदर्भ में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है।
0: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की ज़रूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और बच्चों को रुलाना है, उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफ़ी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, फिर कहा रो मत, तुमको मिल गया है। इस तरह मेरे रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है, ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह अम्मा जी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 सुरों की व्याख्या जो की है कि षड्जश्चु ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमास तथा पंचमो धैवतश्चैव सप्तमोत निषादवान। तो इन 7 सुरों से आपकी जो पहली मुलाकात हुई वो कब हुई, आपके पहले गुरु कौन थे?
0: मैंने कहा ना, 9 साल के उम्र में श्री गणेश वायलिन पिताजी ने पकड़ा दिया, तो उसी दिन से।
1: इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था? मन में डर जो होता है,
0: डर ऐसी कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है,
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो वो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आ करके भाग जाती रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
0: बिल्कुल सहज रूप।
1: क्या बात, बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 9-3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था। फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह।
1: हिंदुस्तानी की तरफ जाने की जो आपकी यात्रा थी, वो कितनी मुश्किल रही?
0: हाँ हाँ, जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
1: जी जी,
0: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
1: जी,
0: और ये सुविधा है, केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा,
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा दे के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
1: जी।
0: तब तक मेरा 12 साल कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा, 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ये सब,

0: चिंता ही नहीं, पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में अभी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली गायकी अंग का जो वादन है?
0: कर्नाटक संगीत में उस क्षेत्र में जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
1: अच्छा।
0: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए।
1: जी।
0: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी। तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
1: जी
0: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
1: जी।
0: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। वा, वा। इस तरह शुरू हो गया।
1: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
0: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि इतने महान कलाकार से
1: जी जी,
0: संगीत साधक से हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
1: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की गायकी का जो ठहराव है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा?
0: बनारस घराने की बात नहीं उठती है, कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया।
1: हाँ जी।
0: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया, हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
1: जी जी,
0: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
1: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
0: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं छूट।
1: क्या बात, क्या बात।
0: और किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ, फिर भी अगर हुआ होगा तो चैन नहीं होता था
1: जी जी जी,
0: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
1: क्या बात है, किसी किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा। एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
0: बिल्कुल, हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
1: अच्छा।
0: मेरे पेरेंट्स के।
1: हाँ हाँ।
0: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
1: हाँ,
0: चाहे लड़की हो या लड़का,
1: हाँ,
0: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वायलिन और बो, तब से शुरू हो जाता है।
1: वाह।
0: तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
1: हाँ हाँ हाँ। जब कृष्णन साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे, या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक, किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
0: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं
1: जी जी।
0: वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
1: वाह। बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
0: वायलिन में? इंस्ट्रूमेंट में?
1: इंस्ट्रूमेंट में।
0: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
1: हाँ, क्या बात। अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
1: जी,
0: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
1: क्या बात है, कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज़्यादा थे, पुरुष कलाकार ज़्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थीं। तो कैसा अनुभव था आपका, किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
0: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
1: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी, आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
0: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया
1: जी,
0: खूब उन्होंने प्रोत्साहन दे दिया।
1: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
0: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: वो भी गायकी ही बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की। तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता।
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल सही कहा
0: लोगों को
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे। हाँ। तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
1: बिल्कुल। और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
0: मेरे
1: साथ
0: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी, कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, जैसे कि यमन है, तोड़ी है, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
1: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपने आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
0: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है, फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो हैं ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उन्हीं को हम, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
1: वाह क्या बात, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में। गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में
1: जी। बिल्कुल।
0: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी।
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए।
1: हाँ।
0: टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे
1: जी।
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है। हाँ। मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में कर लोगी तुम, मैं कोशिश करूँगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल सिखा दिया, बड़ा ख्याल
1: जी,
0: स्थाई अंतरा। उसके बाद वहाँ से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहाँ हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाज़ें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा, आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में? नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा, वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गई थी। अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम। तो छड़ी ले करके वहाँ, वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे। कब जब आए तो, हाँ चल बजा, आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बचाया, और उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा, आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एकलव्य का वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लड़की कल आई थी मुझसे सीख करके, आज बजा दिया।
1: वाह।
0: उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में, और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: क्या बात है अम्मा जी। 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाए बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी,
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है
1: जी,
0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: क्या बात। आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है आजकल, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: क्या बात।
0: अगर सही माने में अच्छा बजाना है, अच्छा गाना है, तो
1: जी जी जी
0: मेहनत करनी ही पड़ेगी।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: क्या बात। थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुन करके हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया, और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर एन राजम का साक्षात्कार, जिसे जयंत पात्रिकर ने प्रस्तुत किया। अब आइए सुनते हैं विदुषी डॉक्टर एन राजम द्वारा वायलिन पर प्रस्तुत एक भावपूर्ण भजन।

आप सुन रहे थे पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर एन राजम का मनमोहक वायलिन वादन। तबले पे संगत कर रहे थे पंडित मुकुंद राज देव। वायलिन पे संगत कर रहे थे अभिषेक सिन्हा। आकाशवाणी एट 90 के अंतर्गत गुरुवार 7 मई 2026 को दादर स्थित स्वातंत्र वीर सावरकर सभागार में आमंत्रित श्रोताओं की उपस्थिति में आयोजित सुर गौरव संध्या नामक विशेष संगीत कार्यक्रम का

ये संपादित अंश था। निर्मिति सहाय निकिता तांबे, प्रस्तुतकर्ता राजेश शेजवले। ये आकाशवाणी मुंबई की निर्मिति थी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे थे पद्म विभूषण विदुषी डॉक्टर राजम जी का इंटरव्यू। इसके बाद नमस्ते भारत में कहानियां सुनाती हैं, ये सेगमेंट लेकर आ रहा है आपका मनमीत आरजे अमित। और उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: मुंबई तवरी मलबार हिल इंद्रपुरी कुबेरांची वस्ती तिथे सुख

0: या अज्ञात कथा आकाशवाणीच्या रेनबो आणि अस्मिता वाहिनीवर या दोन्ही ठिकाणी आपल्याला ऐकता येणार आहे. त्यामुळे जोडलेले राहा, भेटूच
1: लवकरच.
2: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी. मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन.

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आपने ट्यून इन किया है 107.1 MHz। मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित। नमस्ते भारत इस कार्यक्रम का हमने आगाज कर दिया है और आज आप कहेंगे कि बच्चे इस 25 मिनट में आप हमें क्या सुनाएंगे, तो आपसे मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। 14 मई है आज, भूले नहीं, यानी वो पावन दिन जब पुरंदर के किले में स्वराज्य के दूसरे छत्रपति का जन्म हुआ था। चलिए आज याद करते हैं उसी महायोद्धा को जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। छोटी सी प्रेरक कहानी संभाजी महाराज की। 6 वर्ष के थे बस छत्रपति संभाजी महाराज जब अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जंगल गए थे ना। अचानक सामने आए एक खूंखार जंगली शेर को देखकर नन्हे संभाजी महाराज बिल्कुल नहीं डरे। उनकी इस अद्वितीय निडरता को देखकर खुद शिवाजी महाराज भी दंग रह गए थे। आज पराक्रमी योद्धा के रूप में संभाजी महाराज को हम जरूर याद करते हैं।

लेकिन शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के वो महाज्ञानी थे, इसके बारे में हम कुछ ही देर में जान लेंगे। हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा अंदाज। सुनते रहना एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत में कहानियां सुनते हैं सेगमेंट विद आपका मनमीत आरजे अमित।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 11:15 हो चुके हैं। मैं हूं शैलेंद्र नगराले। आइए नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की शिखर वार्ता के लिए चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में ईरान युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, व्यापार तनाव, ताइवान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को वैश्विक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो से एक मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। समाचार में आगे, सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। और समाचार के अंत में, उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। एफएम रेनबो पर अगला कार्यक्रम है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।

हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, किम छो, सस्रियकाल आणि मुंबई कसकाय झकासना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। गुरुवार की ये मस्त वाली सुबह, लेकिन सुबह को कुछ दोपहर सी फीलिंग आती है, क्योंकि धूप का मौसम और गर्मी जो है वो अपने चरम पर है। बाहर सफर करते हुए या फिर कहीं आप जा रहे हैं या फिर आपको बाहर रहने की जरूरत पड़ रही है, तो तुरंत ऐसा लगता है कहीं एसी मिल जाए और वहां जाके बैठ जाए या फिर किसी ठंडी पेड़ की छाया में बैठ जाए। खैर, इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेकर, क्योंकि कार्यक्रम है ब्रेक फ्री। FM रेनबो के साथ इस दिन की शुरुआत करते हैं। स्टूडियो क्लॉक के हिसाब से समय हो चुका है 11:08। आप सुन रहे स्टेशन ऑफ नेशन FM रेनबो और मेरी आवाज आप पहचानते हैं ही, मैं हूं RJ शैलेंद्र। तो चलिए ब्रेक फ्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ खूबसूरत नगमों के साथ, सतरंगी वाले इश्क के साथ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

की आवाज में, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। किसी की आंखों की अदाएं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं। इस गीत को सुनकर विशाल ने इसे लिखा था, विशाल शेखर इनका ये कंपोजिशन। फिल्म है ओम शांति ओम। 11:21 का समय हो चुका है दोस्तों, और ब्रेक फ्री सुन रहे हैं आप आरजे शैलेंद्र के साथ। दोस्तों आज 14 मई है। आज ही के दिन, आज के दिन 1657 को मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग शंभू राजे के नाम से भी जानते हैं। अपने पिता की तरह ही उन्होंने भी जो है हिंदू स्वराज के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, और उन्हें भी हिंदू स्वराज का प्रतीक माना जाता है। एक कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक उत्तम भाषा के जानकार, कवि, लेखक और कृषि विकास के ज्ञाता थे। आज ब्रेक फ्री में उनके व्यक्तित्व के उन अनकहे पहलुओं को जानते हैं जो एक वीर योद्धा होने के साथ साथ, एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ, एक मन से कवि, लेखक और प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचने वाले राजा थे। उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू जो शायद आपने ना सुने हो। जानेंगे उन सब पहलुओं के बारे में, लेकिन पहले पहले कुछ प्यारे से गीत FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
3: जी हाँ, आकाशवाणी 107.1 एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। 11:31 का समय आरजी शैलेंद्र के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री में बातें चल रही है संभाजी महाराज की युद्ध नीति और एक शासक के अलावा उन्हें संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषा में विद्वत्ता हासिल थी। वे एक परिष्कृत शिक्षित मराठी के अतिरिक्त संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषा के पारखी भी थे। उनकी शिक्षा के लिए श्रृंगारपुर के केशव पंडित उर्फ केशव भट्ट को नियुक्त किया गया था। उन्होंने संभाजी महाराज को संस्कृत के व्यापक ज्ञान से भी परिचित कराया। संभाजी महाराज ने संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषा में कई रचनाएं, कविताएं और लेखन भी किया है। उनके व्यक्तित्व के इस पहलू के बारे में कम लोग जानते हैं। चलिए, उन्होंने जो रचनाएं और लेखन की है उन रचनाओं के बारे में जानते हैं। लेकिन पहले मस्त वाला म्यूजिक एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स।

सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर की आवाज है दोस्तों, और उन्हीं का एक कंपोजिशन फिल्म है तानाजी।

लव लव इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा इनकी आवाज़ थी और अपने ज़माने का एक बहुत ही पॉपुलर और लोगों के दिल को छू लेने वाला ये एल्बम मजनू सुल्तानपुरी साहब के लिखे बोल और आनंद मिलिंद का ये कंपोजिशन। आप हैं मेरे साथ आरजी शैलेंद्र के साथ एफएम रेनबो पर ब्रेक फ्री कार्यक्रम में, और ब्रेक फ्री कार्यक्रम में बात चल रही है संभाजी महाराज के व्यक्तित्व के उन अनकहे पहलुओं की जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी जिनमें संस्कृत में बुध भूषणम और हिंदुस्तानी में नायिका भेद, सात शतक और नखशिखा ये उनके प्रमुख लिखी हुई किताबें हैं। साथ ही बुध भूषणम में संभाजी महाराज ने राजनीति पर कविताएं लिखी और जिन कविताओं में उन्होंने जिक्र किया है कि राजा के लिए क्या करे और क्या ना करे तथा सैन्य रणनीति में शामिल कैसे हो। इस बुद्ध भूषणम किताब में इन बातों के अलावा उन्होंने पहले कुछ श्लोक जो है वो अपने दादाजी यानी दादाजी के प्रशंसा में उन्होंने लिखे हैं। शाहजी महाराज जो उनके दादाजी थे उन्हें वे संभाजी महाराज इंद्र का अवतार मानते थे और साथ ही साथ उनके पिताजी शिवाजी महाराज की प्रशंसा में भी उन्होंने कुछ इस किताब में कविताएं लिखी है। और हम जो है सभी संभाजी महाराज को आदर और सम्मान के नज़र से देखते हैं, सारा भारत उन्हें जो है वो सम्मान के नज़र से देखते हैं। उनके बारे में और भी दिलचस्प कुछ बातें हैं लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और म्यूजिकल ब्रेक के बाद उनकी बातें और मनोरंजन का खूबसूरत गीतों का सिलसिला जारी रहेगा एफएम रेनबो पर दिल से दिल तक।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
2: वेलकम बैक दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संभाजी महाराज, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनकहे पहलू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, RJ शैलेंद्र। कृषि जो एक महत्वपूर्ण और मुख्य व्यवसाय था उस जमाने में, कृषि विकास का संभाजी महाराज को उत्तम ज्ञान था। उन्होंने सूखा रहित उपाय भी लागू किए थे। सूखे में जो नियोजन रहता है किसी राज्य का या प्रदेश का, उसे कैसे नियोजित किया जाए, इसके बारे में वो उत्तम जानकारी रखते थे। कृषि विकास को प्रोत्साहित किया करते थे। साथ ही अपनी पिता की प्रशासनिक व्यवस्था को भी जो उन्होंने जारी रखा। युवा मराठा साम्राज्य के मार्गदर्शन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धर्मवीर यानि धर्म के रक्षक के रूप में माना जाता था। निश्चित मृत्यु सामने होने पर भी हिंदू धर्म के प्रति संभाजी महाराज की निष्ठा ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवादियों तथा भारत के हर नागरिक के दिल में गर्व और सम्मान का स्थान दिला।

उनके उसी दिलेरी और उनके इस कार्य के लिए संभाजी महाराज महाराज उनके जन्मदिन पर उन्हें मानाचा मुजरा। कार्यक्रम ब्रेक फ्री में आगे जो खूबसूरत कुछ गीत और समाचार के बाद हमारी मुलाकात होगी म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में। बने रहिए एफएम रेनबो पर, जल्द ही लौट कर आऊंगा इन

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 12:45 हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा NDRF ने 2 दशक की अल्प विधि में देश के नागरिकों को विश्वास जीता है। अमित शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के 10 नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज मुंबई में विधान भवन में हो रहा है। इन सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों ने चुना है। शपथ लेने वाले सदस्यों में डॉक्टर नीलम गोरे, बच्चू कड़ू, अंबादास दानवे, डॉक्टर प्रज्ञा सातव, प्रमोद जठार, जिशान सिद्दीकी, माधवी नाइक, सुनील करजतकर, विवेक कोल्हे और संजय भेंडे शामिल है। समाचार में आगे, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि भारत को ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े सभी समझौते पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करेगा कि बाहरी और अनुचित प्रतिस्पर्धा से दोनों देशों के समझौतों पर कोई असर न पड़े। सरगई लावरोव ने कहा कि रूस भारत को गैस, तेल और कोयले की आपूर्ति भी जारी रखेगा। और समाचार के अंत में खेल समाचार। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 खेला जाएगा। ये थी इस घंटे की सुर्खियां। FM रेनबो पर अगला कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे, और म्यूजिक कैफे की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नगमे के साथ।
2: प्लीज मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो। हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए।
3: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया। समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। प्लीज शेखर, लेट मी गो।

दिल दिल का ये काम है आपके और मेरे दिल, मेरा दिल जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है और आप सभी लोग कार्यक्रम में जुड़े हैं। जो लोग कार्यक्रम में जुड़े हैं, क्योंकि नए कार्यक्रम म्यूजिक कैफे की शुरुआत हो चुकी है, कुछ गीत जो है वो नए ताज़ोतरीन और कुछ प्यार भरे नगमे म्यूजिक कैफे में आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो लोग कार्यक्रम में मेरे साथ बने हुए हैं उनका जिक्र भी जरूर करूँगा। वेल, देखिए 90 का दशक जो है वो मेलोडियस गीतों का दशक था और इन गीतों में जो है वो लोगों को बांध के रखने की भी बहुत ताकत थी। आप में से कई लोग जो है वो 90 के दशक के गीतों को बहुत पसंद भी करते हैं। चलिए आज उन गीतों की कुछ झलकियां और वो गीत आपके लिए लेकर आया हूँ और साथ ही साथ कुछ रोमांटिक और प्यार भरे नगमे भी आपके लिए लाया हूँ। बने रहिए मेरे साथ एफएम रेनबो पर, जल्द ही लौट कर आऊँगा इन खूबसूरत नगमों के बाद।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा कुमार सानू की आवाज़ और मजरू साहब के लिखे बोल जतिन ललित का एक और बहुत ही प्यारा सा कंपोजिशन। वेलकम बैक म्यूजिक कैफे में आप सभी का एक बार स्वागत है। कुछ 90s के गीत आपके लिए लेकर आया हूँ तो कुछ रोमांटिक नगमे आपके लिए लेकर आया हूँ। जो लोग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। प्रकाश शिंदे है, वैदही मैडम है, बाबा है, विजेंद्र घाटोल है, अकोला यहाँ से उन्होंने संदेश हम तक भेजा है, पंकज मोहाड़ है, अंजू मैडम अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़ी हुई है, राकेश माथुर इन्होंने पूना से मैसेज किया है, और साथ ही साथ और भी कई सारे लोग जिनमें अशोक पाटिल वर्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। आप लोगों का साथ ही कार्यक्रम को और भी रंगीन बनाता है, खूबसूरत बनाता है। 90s में जैसे मेलोडियस म्यूजिक था, ठीक उसी तरह कुछ नेचर से जुड़े हुए गीत जिनमें नेचर का वर्णन हो, ऐसे कई गीत भी जो है वो 90s की अट्रैक्शन रहे हैं। और ऐसे गीतों को लोगों ने खूब पसंद भी किया है। आप में से कई लोग अभी जो है वो गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो कई लोग जो है वो बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं, नेचर के पास जाना पसंद करते हैं। आप में से कई लोगों ने कुछ ट्रिप भी प्लान की होगी। चलिए कुछ ऐसे गीतों के बारे में, कुछ ऐसे गीत भी जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। और हाँ, आपके संदेश जो है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी कुछ बातें अगर आप मेरे से साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। बने रहिए FM रेनबो पर। अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वेलकम बैक दोस्तों, वरुण जैन, राघव चैतन्य और सचिन जिगर की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। तेरी बातों ने ऐसा जादू किया, इस फिल्म से 12:40 का समय हो चुका है, दोपहर का ये वक्त, भरी दोपहर में जो लोग काम की वजह से बाहर है उन्हें हमारे गीत और ये संगीत सुकून देता है। FM रेनबो पर आप कहीं भी हो, चाहे काम की वजह से बाहर या फिर कहीं ऑफिस में अपने काम को कर रहे हो, हमारे साथ जुड़िए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो पर, या फिर हमारे ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। 3 बैक टू बैक बहुत प्यारे गीत आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जो लोग अभी जिन्होंने संदेश हम तक भेजा है उनका जिक्र करना चाहूँगा। शुभदा मैडम ने थोड़ी देर पहले संदेश भेजा है, कह रहे कि शैलेंद्र जी आपका साथ हमेशा ही इसलिए हमारी जिंदगी है। थैंक यू सो मच शुभदा जी। बाबा इनका दादर से संदेश आया है और हमेशा बहुत ही एंथुजियास्टिक और उत्साही रहते हैं। ये श्रेया पलक उनके साथ, उनके किसी हितेशी का नाम भी उन्होंने भेजा है। और महर अरोरा जी जो है वो उन्होंने संदेश भेजा है, साथ में ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा, ये उनके साथ कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। आर्यन सोमवंशी जो है वो जलगांव से उन्होंने संदेश हम तक भेजा है। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बहुत ही प्यारे नगमे, 3 बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आया हूँ FM रेनबो पर, बने रहिए। इन गीतों के बाद आप समाचार सुनेंगे मराठी में और फिर मैं आपसे कार्यक्रम में फिर से जुड़ूंगा, हिट हॉट कार्यक्रम में, जहां आपके पसंद के गीत जो है वो कार्यक्रम में रहेंगे। सो कहीं मत जाइए, बने रहिए FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या दुपारच्या बातमीपत्रात मी राजश्री पोहेकर आपलं स्वागत करते। तंत्रज्ञानातील प्रगती जागतिक व्यवस्थेला आकार देत असून ती सुशासन आणि समावेशक विकासासाठी उपयोगात आणता येऊ शकते असं परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे। ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांची 2 दिवसीय बैठक आजपासून नवी दिल्लीत सुरू झाली, त्यावेळी जयशंकर अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते। शांती आणि सुरक्षा हे जागतिक व्यवस्थेचे केंद्रबिंदू असून अलीकडील संघर्षांमुळे संवाद आणि कूटनीतीचं महत्व अधोरेखित होत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कुमार सानू की आवाज़ थी दोस्तों, जावेद अख्तर साहब के लिखे बोल और आड़ी बर्मन साहब ने इस गीत को कंपोज किया था। हिट हॉट कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस गीत की फरमाइश हम तक संदीप कुमार इन्होंने जलंधर से भेजी थी। संदीप कुमार की तरह आप भी अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश हम तक भेज सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर्स आप जानते ही है 4515-4132 या फिर 4515-4133 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर 8657-6617-1 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में खूबसूरत गीत, आपकी फरमाइशें और कुछ दिलचस्प बातें लेकर मैं आपके साथ बना रहूंगा हिट हॉट में और आप भी बने रहिए अपने कुछ फरमाइशी गीतों के साथ। अगली कुछ फरमाइशें और उनका जिक्र भी करूंगा, लेकिन वक्त की कमी है, बातें कम और आपकी फरमाइशें प्ले करूंगा।

वेलकम बैक दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे को आप सुन रहे थे एफएम रेनबो पर लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ और इस खूबसूरत गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी राकेश माथुर साहब ने पूना से, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, कार्यक्रम में हमेशा बने रहते हैं और कुछ न कुछ अपनी फरमाइश और संवाद हमसे करते रहते हैं। आप लोग भी अगर अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए मैं एक बार नंबर फिर दोहरा देता हूं, 4515413 2, 4515413 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर 8657661071 पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगली कुछ फरमाइशें किसकी है ये भी आपको बताना चाहूँगा। अगली फरमाइश जो प्ले करूँगा वो विजेंद्र घाटोल है, अकोला से उन्होंने हम तक संदेश भेजा था और प्रकाश शिंदे जी ने जो है वो फरमाइश अपनी हम तक भेजी है और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे साथ शेयर की है कि लकीर जो फिल्म है और रन नाम की फिल्म, आज दोनों फिल्मों को रिलीज़ होकर पूरे 22 साल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच प्रकाश शिंदे जी आपके इस इन्फॉर्मेशन के लिए और कार्यक्रम में आपके संदेशों को मैं शामिल करता ही हूँ, साथ ही साथ आपकी फरमाइशें भी रहेगी। अभी समय जो है वो 1:23 हुआ है, ठीक 1:30 आप समाचार सुनेंगे और समाचार के बाद जो है वो राष्ट्रीय मराठी समाचार रहेंगे, वो 1:30 से लेकर 1:40 तक, फिर 1:40 से मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा कार्यक्रम हिट हॉट लेकर। अपनी फरमाइशों का आनंद लीजिए कार्यक्रम हिट हॉट में, जल्द ही आपसे जुड़ूंगा इन गीतों के और समाचार के बाद। स्टे ट्यून एफएम रेनबो विथ आरजे शैलेंद्र।

बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज है। प्रकाश शिंदे साहब ने ये फरमाइश हम तक भेजी है। रन फिल्म का ये गीत है। 1:45 का समय, हिट हॉट कार्यक्रम जो है वो अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए आपसे ज़्यादा बातें बिना की आपकी फरमाइशें प्ले करना चाहूँगा। इंदौर से अजय साखरे की फरमाइश हम तक पहुंची है। महेश शेट्टी साहब का भी संदेश आया है और संदेश के साथ साथ अपनी फरमाइश भी उन्होंने भेजी है। और भी कई सारे लोगों के संदेश मुझ तक पहुंचे हैं, जिसमें जिन संदेशों में नितिन स्वामी एरोली से उनका संदेश आया है, महेश कश्यप है और महेर अरोरा साहब है पदमपुर जिला राजस्थान से, उन्होंने जो है वो अपनी संदेश हम तक भेजी है, साथ साथ फरमाइश भी भेजी है। अभिजीत गवनकर है और आपने भी जो है अपनी संदेश के साथ फिल्म गीत की फरमाइश भेजी है। फिरोज भाई हमारे रेगुलर लिसनर, उन्होंने बहुत सारी जो है वो फरमाइशों के साथ साथ जानकारी भी हमें भेजी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके संदेशों के साथ जो है वो आज आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है। चाहूँगा कि कुछ दो तीन गीत आपके लिए फिर से प्ले करूँ। मैं आरजे शैलेंद्र जब भी जाता हूँ आप सभी से यही, आप सभी के लिए यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में हर किसी को उसका सच्चा प्यार मिले और वो बहुत बहुत खुश रहे। आप सभी लोग अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें, उनके साथ समय बिताए, आप जिनके साथ आपको समय का पता नहीं चलता। आज गुरुवार है, अपने गुरुवर्य को याद करने का दिन, अपने जिन्हें आपने गुरुस्थान दिया है उन्हें याद करने का दिन, और संभाजी महाराज की जयंती भी है तो उन्हें माना सा मुजरा, और साथ ही साथ अपने गुरुवर्यों को भी याद कीजिए। कीप लिसनिंग, कीप लविंग एफएम रेनबो एंड लव मी टू। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू ऑल, दिल से दिल तक।

0: The U.S. President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The U.S. President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।

0: कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागरेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रिड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक

0: नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में यह 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि

0: भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: That's so so beautiful. अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म, वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर, की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं, बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया, बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊं, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल की तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
0: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वाज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी। एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपके पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।
0: वाह।
1: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: So amazing. In fact, मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी।

0: मैंने लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था
1: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना
0: हो सकता है
1: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
0: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी जो आपको लाइफ आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विद पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है
1: जी।
0: सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी जिंदगी में चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए, लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑन ग्राउंड इन एयर फ्लाइंग एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है, तो इस नजरिए से मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनैलिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जांपल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
1: दैट्स अमेजिंग।

0: इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है जी, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी बेहतरीन, मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड, हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का। लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
0: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया, बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
0: क्या बात है।
1: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी, और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
0: जी,
1: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
0: ओह माय गॉड।
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो

0: चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो.
1: इनर स्ट्रेंथ
0: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है. दैट इज एक्चुअल फ्रीडम. एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो.
1: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी ये बता रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
0: जी.
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता. ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
1: जी.
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो. लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए. ये जिंदगी है.
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए. अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा. एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है. रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है.
1: बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स. इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो
1: जी,
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं. क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं. कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े तो तब बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपने, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी. लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
1: जी.
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है.
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है. केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ.

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
0: ओके, आई गॉट दैट।
1: सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया, तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो

0: इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्जाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: कलाम साहब ने ये बात कही
0: जी,
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी,
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है। नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
0: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म्ड फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है। क्योंकि बाहर कॉर्पोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
1: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें
0: जी,
1: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
0: तो आप

0: उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
1: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बार तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हो। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लव यू जिंदगी, और आगाज करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ मोहित चौहान की आवाज में।

0: Rani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 5:15 और 58 सेकंड हो चुके हैं. हैरत, अनजाना अनजानी फिल्म का गाना अकेली की आवाज में आपने अभी भी सुना. और बहुत से लोगों को जब हैरत होती तो कहते हैं कि यार मई के महीने में तुम मुंबई यहाँ क्या कर रहे हो, छुट्टियों पे क्यों नहीं गए. यानी सबका एक छुट्टी मनाने का अंदाज बहुत अलग होता है. और जो अगर इस शहर में रहकर, भले ही गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो क्या हुआ, लेकिन जब छुट्टियों में अक्सर लोग बहुत सारे जो अपने अपने गांव चले जाते हैं और बहुत सारा ट्रैवल करने लगते हैं, और उस दौरान जब ट्रैफिक कम नज़र आने लगता है, मुंबई शहर कुछ अलग सा नज़र आने लगता है. और जो लोग बाहर नहीं गए हैं और जो बाहर है वो फोन कर करके उनको गिल्टी फील करा रहे होते हैं कि यार देखो हम तो, यार तुम कहाँ जा रहे हो, इस छुट्टी में तुम्हारा क्या प्लान है. यानी कि एक दूसरे से पूछने का अंदाज बन गया कि तुम क्या कर रहे हो. अब वो तो ज़माना रहा नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट लोग अपने ना नानी दादा दादी से मिलने चले जाते थे. ऐसा लगता है कि बीते ज़माने की बात हो गई. न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया तो रिश्तेदारों से, बड़े बुजुर्गों से जुड़ाव कम हो गया. उसके क्या फ़ायदे घाटे आपको बखूबी पता है. लेकिन उसके बावजूद तुम बाहर छुट्टियों में कहाँ गए, चाहे विदेश में कहाँ गए, चाहे देश में कहाँ गए. लेकिन कोई अब ये नहीं पूछने वाला कि यार अपने नाना से मिले कि नहीं, अपने दादा दादी से मिले कि नहीं मिले. अब ये कोई पूछता ही नहीं है. और ना पूछने की बात रहेगी ना बताने की बात रहेगी. लेकिन जो भी हमें सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से जो लोग छुट्टियों में वहाँ जाते थे, शायद लगता वो आखिरी पीढ़ी हमारे साथ रहेगी जो हमें सुनती भी है, कि भाई वो फ़र्क देख रहे हैं उस ज़माने का और इस ज़माने का. अब वो पीढ़ी है जो 1996 के पहले मोबाइल फ़ोन के ज़माने में भी उन्होंने देखा है और मोबाइल फ़ोन के ज़माने में भी देख रहे हैं. उसके साथ उसके बिना, दोनों चीज़ें एक साथ, कहते हैं ना कि कंपैरेटिव एनालिसिस वाली ये आखिरी पीढ़ी है. और भी करेंगे इस पे बातें, लेकिन जैसा कि मेरा तकिया कलाम होता है, मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते हूँ गाने पे गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, छोटा सा फसाना.

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: श्रेया घोषाल और अनुपम रॉय की आवाज में जर्नी सॉन्ग था दोस्तों ये, और फिल्म पीकू का ये गीत। क्या फिल्म थी, इरफान साहब के किरदार, बच्चन साहब, दीपिका पाडुकोण, एब्सोल्युटली आई मीन जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा जरूर देखना चाहिए, बहुत ही अलग कलाकृति थी सुजय घोष द्वारा। और मैं अगला गीत लगाने के पहले खास तौर से महिलाओं से एक बात जानना चाहता हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आज आप हर फील्ड में महारत हासिल कर रही हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, हर तरफ इस मकाम पर पहुँचने के बावजूद मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी सेविंग्स हैं, आपको जो भी फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है, आप अपने हिसाब से ही करती हैं, आपका ही फैसला होता है, या आज भी ये जो फाइनल डिसीजन आपके अपने पैसों का क्या करना है, पिता, भाई, पति, दोस्त वही सब बताते हैं। ठीक है, कहने का तो ये कि राय आप सबकी ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद फाइनली आपका कॉल होता है या इन सब में से कोई ना कोई कॉल लेता है, भले ही पैसे आपके हो। अगला गीत कामरान अहमद की आवाज में, जुदाई फिल्म का गाना। माफ कीजिएगा, जुदाई गीत जन्नत फिल्म से। 5:37 हो चुके हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ में। आपका दोस्त शिव।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: 5:40 होने को जा रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज। लव यू जिंदगी अपने साथ, अपने दोस्त शिव के साथ आप लोग सुन रहे हैं। अभी भी आपने गीत सुना, हर्षित सक्सेना की आवाज में हाल दिल फिल्म का नाम मर्डर 2। और उसके बाद जो अगला गीत मैं सुनाने जा रहा हूं, बेनी दयाल शर्मली कोलगड़ी की आवाज में रेस्त्री का गाना लत लग गई। और मैंने जो पूछा था खासतौर से महिलाओं से कि मेहनत आप कर रहे हैं, पैसे आप कमा रहे हैं, सलाह सबकी लेते हैं, लोग एक दूसरे से राय मशविरा करके अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें पहले से हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि जब भी मेल फीमेल एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, कि लड़का है तो उसको आगे जाके घर की देखभाल करनी है, कमाना है, घर का बोझ चलाना है, ये तो पराया धन है, चली जाएगी। टाइम के साथ सोच में परिवर्तन आया, बहुत जगह आज भी नहीं आया, लेकिन जब परिवर्तन आ गया है, फीमेल्स महिलाएं अपने बल पे खड़ी हो चुकी हैं, घर को चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, काम काज से लेकर सारी जिम्मेदारियां। लेकिन आज भी जब फाइनेंस की बात आती है, कुछ बचत की बात आती है अपने लिए खास तौर से, और अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना और फ्यूचर में क्या करना है, आज भी बहुत ज़्यादा रिलाय करती हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन मेरी सोच गलत भी हो सकती है। तो मैं इसलिए फीडबैक के जरिए जाना चाहता था कि क्या आज भी परिवर्तन आ चुका है, या 90% कॉल आज भी कोई मेल लेता है और आप सोचते कि नहीं यार, शायद कहते ना फाइनेंशियल लिटरेसी में इतना नहीं बताया गया, तो शायद वो समझ उनको बेटर है, थोड़ी स्ट्रीट स्मार्टनेस में कुछ कमी रह जाती होगी, इसके लिए हम सोचते कि बेहतर है उनको ही करने दें, ऐसा ही है क्या? 5:44 और 54 सेकेंड हो चुके हैं।

0: Sunny FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: आरिफ लोहार के धमाकेदार आवाज साथ दिया था हर्षदीप कौर ने, जुगनी ये गाना था दोस्तों फिल्म कॉकटेल से। 5:54 हो चुके हैं, पहला हिस्सा यहीं पर समाप्ति की ओर है। 6 से 6:20 तक होंगे समाचार और उसके बाद हम दोबारा लेकर पेश खिदमत होंगे अंदाजे बयां। सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज में दीदार है आपको सुनवाते हैं, फिर हमारा जो सवाल था ज्यों का त्यों है वो हम पूछते रहेंगे, आपके सारे फीडबैक्स आ जाने दीजिए, एक साथ बताएंगे पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में। 107.1 MHz, लव यू जिंदगी, अपने साथी शिव कुमार सिंह के साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक दोस्तों, 6:26:48 हो चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं अंदाज़े बयां अपने साथी शिव के साथ। सुनिधि चौहान की आवाज़ में दंदनाता गाना आपने सुना एक कमली, और उसके बाद जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अंकित तिवारी की आवाज़ में फिल्म रॉय का एक गाना तू है कि नहीं। ये टाइम जब मुंबई वासियों खासतौर से अलग अलग तरीके से जूझते हुए वापस जाने की फिराक में होते हैं, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, ड्राइव कर रहे हो, जिस भी हाल में हो, चाहे आप टिपिकल बांद्रा से लेके बोरीवली रास्ते के ट्रैफिक जाम में फंसे हो, जहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत नॉर्मली चले जाते हैं, और जहाँ मुंबई वासी और ख़ासतौर से मुंबई करके जो एक इतना बिजनेस करने की जो संभावना होती है, टटोलने की संभावना होती है कि उस जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे कौन सा बिजनेस चलता है, वहाँ में क्या बेचना है, लोगों का मन कैसे बहलाया जाए, ये सारा जो स्पीड है और जो सारा कैलकुलेशन है ख़ासतौर से मुंबई शहर को मुंबई बनाता है। हर हालात में हम कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, चाहे अपने मन बहलाने को, चाहे बिजनेस करने के लिए, चाहे समय काटने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए। इसलिए मुंबई की तेज़ी, मुंबई का पेस वाकई पूरी दुनिया में, मुंबई में तो है ही है लेकिन पूरी दुनिया में जाना जाता है। थोड़ा म्यूजिक को हौले हौले पेस से मैं आपकी शाम को थोड़ी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अंदाज़े बयां एफएम रेनबो।

और प्यार के कहते हैं ना कि डेफिनेशंस बहुत बदल चुके हैं समय के साथ। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कंसर्न, केयर, अबे बहुत कुछ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा 360 डिग्री टर्न आ चुका है। प्रैक्टिकलिटी ने हर चीज़ के ऊपर घर कर लिया है। और जैसे मैं हमेशा प्रोग्राम के दौरान कहता हूँ, आउट ऑफ वे जाना एंड किसी के लिए सोचना, किसी की खुशियों में खुश होना, किसी के कहते ना कि किसी न किसी माइलस्टोन पर उसे अपना माइलस्टोन समझकर सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। एंड लगातार जजमेंटल बनते रहते हैं, अपने से ज़्यादा अगले की परवाह है, कहीं मेरे से आगे तो नहीं निकल गया। लाइफस्टाइल कॉन्शियस हो गए हैं और ज़िंदगी को कहते ना टटोलने का और तौलने का तरीका वही हो चुका है। बेंचमार्क हमारे बहुत बदल चुके हैं। खैर, ज़्यादा अब क्या समझाना, शाम का वक्त है, 6:40, अलग अलग जद्दोजहद से लोग गुजर रहे होते हैं, तो हमारा काम है बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनाना। अगला गीत बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर वाला, सजनी रे, फिल्म का नाम, लापता लेडीज़ का ही गाना आपको मैं सुनवाता हूँ। उसके बाद जेम्स की आवाज़ में रिश्ते भी सुनाऊँगा आपको, और इन दिनों सोहम की आवाज़ में वो भी सुनाऊँगा मैं आपको। 107.1 MHz मोर बजाना लेस पकाना, सुनाते हैं गाने पे गाना।

0: Ali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 6:50 होने को जा रहे हैं, अभी भी आपने सुना ये गीत इन दिनों सोहम की आवाज में, लाइफ इन मेट्रो फिल्म का दोस्तों गाना था। हालांकि जब इसका सीक्वल उतना नहीं चला, लेकिन इस फिल्म ने 2013 के आसपास उस जमाने में जो भी अपने इर्द गिर्द घटित हो रहा था, एकदम उस तरीके से मतलब दिखाया कि हर इंसान जो भी थिएटर में गया वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। जब भी आप मूवी से रिलेट करते हैं तो मूवी बिल्कुल चल पड़ती है। और जो अगला गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनूना संगे मरमर, लेकिन उसके पहले के और पलक मुछाल की आवाज़ में लापता है। समय कम गीत ज़्यादा, कोशिश करेंगे उसे एक के बाद एक पूरा करने की। और हम जब बता रहे थे कि आज के ज़माने के हिसाब से, और ख़ास तौर से मैंने जब महिलाओं से आग्रह किया था कि अपनी फाइनेंशियल कहते ना कि चाबी, वो आप इन्वेस्टमेंट की चाबी किसी और के हाथ में सौंपते हैं, खुद ही फैसला करते हैं। वक्त के साथ बहुत सारा चीज़, चाहे आपको कहते ना कि कंसल्टेंट्स की कोई कमी नहीं है, चाहे मोबाइल फ़ोन में आपके इर्द गिर्द हो, आप अपने रिश्तेदारों से सबसे बिल्कुल सलाह लीजिए, लेकिन एक पुरानी कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी, इसकी ओर ज़रा अमल करते जाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। एंड आजकल के तो चलो बच्चों को स्कूल के ज़माने से फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाया जाता है, उस ज़माने में नहीं था। और थोड़ा बहुत कुछ जो हमारा जो पालन पोषण जिस तरीके से हुआ है, उस परिवेश में रहते हैं और उसके बाद उस तरीके से बिहेव करते हैं, धीरे धीरे आदतें जाते जाते जाती है।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 6:55 और 16 सेकंड हो चुके हैं। अंदाज़े बयां इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके सामने पेश है, 6 बजे समाचार। उसके बाद आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा हम तुम, जिसमें आपके पसंद के गाने हम आपको प्ले करेंगे एक के बाद एक। लेकिन जाते जाते अंकित तिवारी की आवाज में आपको सुनवाते हैं गलियां, और फिर आपसे मुखातिब होते हैं कुछ समय के बाद। सुंदरी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ अपने साथी शिव के साथ बने रहिए।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, 7:11:51 हो चुके हैं। आप सभी लोगों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं आपके मनपसंद प्रोग्राम हम तुम में। इसका आगाज करते हैं राकेश माथुर पुणे से, उन्होंने गाने की फरमाइश की है, फिल्म का नाम काइट्स, जिंदगी दो पल की। आइए सुनते इस गाने को और उसके बाद एक के बाद एक कोशिश करेंगे सबकी फरमाइशें, और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी फीडबैक दिए हैं जो भी मैंने कहा था उसके बारे में वो भी धीरे धीरे बताते जाऊंगा।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अगली फरमाइश है अरविंद कुलकर्णी की इचलकरण जी से। क्या फरमाइश है उन्होंने, मेरा तो पर्सनल फेवरेट गाना चुन लिया है। अरविंद जी, आपका गीत मनहर उदास की आवाज में फिल्म त्रिदेव का गली गली में फिरता है सुनवाता हूँ, और उसके बाद एक और फरमाइश दूसरे स्टेट से, और वो फरमाइश जाएगी बहुत सारी जगहों पर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: अगले गाने की फरमाइश है एक अलग अंदाज लिए हुए, और मुझे लगता है कि एशिया से लेकर यूरोप तक उन्होंने फरमाइश की है। फरमाइश ऐसे कि एक इंसान अपना 91वां जन्मदिन मना रहा है। आज वो 51 ईयर्स के हो गए और इस वक्त तो बैंगलोर में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त जन्मदिन मनाते हुए अपने तमाम दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, खास तौर से कॉलेज के दोस्तों को। और उन्होंने कहा कि उस ज़माने में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होती थी और आज हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, और वही चीज़ धीरे धीरे नज़र आने लगा है। और वो चाहता है कि इन चीज़ों को मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं, जिनके साथ जो फील होता है वो बताऊं कि उस वक्त मैं सोचता क्या था, इस वक्त मैं सोच क्या रहा हूं। तो खैर, उनका नाम है अक्षय एलबुर्गी, जो बैंगलोर में मल्लेश्वरम में रहते हैं। उनके दोस्त एक हैं मनीष, जो लंदन में रहते हैं, एक हैं समीर, जो मुंबई बांद्रा में रहते हैं, एक है वीरेन, जो मुंबई वडाला में रहते हैं। और अपने सभी दोस्तों को कहना चाहते हैं, गाना भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। और स्कूल कॉलेज के टाइम पे उनको लगता था कि नहीं यार, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ पाना है, बहुत पैसों की ज़रूरत है, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन फाइनली मन की शांति किस में मिलती है, धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र के साथ आती है। तो उस ज़माने में जब कोई हमको 40-50 साल का कुछ ज्ञान देता था तो हमको बहुत बोरियत होती थी, और जब हम उस उम्र में पहुँच चुके हैं तो लगता नहीं यार, अब मैं कहूँगा अपने बच्चों को या किसी को तो वो सोचें कि मैं क्या पका रहा हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ समझ में आती, पहले नहीं आती। तो अक्षय, जो आपने गाना अपने दोस्तों के लिए फरमाइश की है, वो गाना मैं प्ले

ये देता हूँ किशोर कुमार, लता मंगेशकर को, रस्के और मेरे ख्याल से गाना सभी लोगों के लिए डेडिकेट होना चाहिए, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सुनते रहे अपने साथी शिव कुमार सिंह को 107.1 मेगाहर्ट्ज, इकलौता चैनल जहां पर होता है मोर बजाना, लस पकाना, लगाते हैं सुनाते हैं गाने पे गाना। 8657661071, 8657661071 पर अपनी फरमाइशें भेजिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: अगली फरमाइश आई दूर दराज पोलैंड से और नागेश ने हमें मैसेज किया और सुनना चाहते हैं गीत मेड इन इंडिया। नागेश जी, पोलैंड में मैं समझ सकता हूं कि आपको ये गाना क्यों पसंद आ रहा है और क्यों आपका मन कर रहा है, और बिल्कुल आपकी फरमाइश सर आंखों पर, और आपके लिए गाना प्ले किए देते हैं। और स्क्रीन पर जो नजर आए थे उन्होंने आजकल बहुत कमाल कर दिया है, मिलिंद सोमन जी ने, तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि उन्होंने क्या कमाल किया। तो फिलहाल मुंबई से लेकर पोलैंड तक ये फरमाइश जा रही है और उसके बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और साथ ही साथ प्रणव शिंदे जी ने भी बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि मेरी आपसे क्या दुश्मनी जो आप मेरी पसंद का गाना नहीं लगाते। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 8-10 गाने लगने हैं और लगभग 1500-1600 फरमाइशें नहीं पूरी होनी है, लेकिन हर दिन हमारे साथ ही कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों की फरमाइशें पूरी कर सकें। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि हम सेम श्रोता के गाने नहीं बजाते ताकि हर एक को मौका मिलना चाहिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: अगली फरमाइश आई है भंडारा महाराष्ट्र से। दिलेश वंजारी सुनना चाहते हैं गीत राज का ये शहर। वाओ, सुजैन और जॉली मुखर्जी की आवाज़ में। जॉली मुखर्जी का एक अलग ही अंदाज है, यहाँ पर शांति शांति है वाकई। गाने के बोल एकदम फिट हैं आपके लिए, और ये गाना, ये फरमाइश खास तौर से आपको जाती है दिलेश वंजारी जी, भंडारा।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 7:43 हो चुके हैं। अगली फरमाइश है राहुल की, जो मुंबई में एक सरकारी महकमे में काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा 6:30 से 8 के बीच में मुझे FM रेनबो सुनने की आदत लग चुकी है और इस वक्त भी ट्रैवल कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी पसंद का गीत अभी ना जाओ छोड़कर आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्ले किया जाए। तो राहुल जी बिल्कुल एक मुंबई का कोई गाना बिल्कुल हम समर्पित करते हैं। इसके बाद अगली फरमाइश आई है ग्रीस एथेंस से, वाओ, वो फरमाइश हम इस गाने के बाद पूरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राहुल जी का एक गीत और उसके बाद संजय जी अपनी पत्नी दर्शन जी को गीत सुनाना चाहते हैं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, फिल्म का नाम क्या बात है। पत्नी को गाना डेडिकेट कर रहे हैं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं,

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: 7:54 हो चुके हैं। अगली कलाकार रीटा स्टेज पर, मैं कहने यार द स्टूडियो में आ चुकी हैं रॉक विद जॉक, और ये रॉक करेंगे रात के ठीक 11 बजे तक आप सभी लोगों के साथ, आपकी फरमाइशों के साथ, अपने मनपसंद गानों के साथ। 7:55 होने को जा रहे हैं कार्यक्रम के अंत में। आखिरी फरमाइश जो मैंने कहा था कि आई है एथन से, और वो सुनना चाहते हैं तन्मय। तन्मय ने यहाँ से छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन आदत लग चुकी है बोले गाना सुनने की, मैं यहाँ पे आ गया। और जब खास तौर से आओ तो विदेश में रहकर देश को मिस करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तन्मय, आपने जो गाना सोचा था अपने दोस्तों के लिए वो गाना मैं प्ले किए दे रहा हूँ। हालांकि उन्होंने दोस्तों का नाम नहीं लिया, लेकिन अरिजीत सिंह की आवाज़ में खैरियत, ये गाना तन्मय सीधे मुंबई से ग्रीस पहुँच रहा है। आप लोग सुनिएगा, हर हाल में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं आपकी सेवा कीजिए। सुनते रहे एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। इसी के साथ अपने दोस्त शिव कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त, बाय।

0: I want to know now is what we're going to do.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या

0: 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि

0: चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Welcome back to your request hour, and next up is again a request from the 80s. This is Owner of a Lonely Heart by Yes, which released in 1983 on the album 90125. Now, it became the band's only number one hit on the Billboard Hot 100 and kind of helped reinvent their sound with a very more with a very modern rock pop style. So coming up, Owner of a Lonely Heart.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Welcome back to the show. Last 10 minutes for you to go, for you to send me your requests and for me to play them for you. All right, I've got the very next request. This is Eric Clapton with Bell Bottom Blues. Now it's got this very nice soft rock blues feeling to it, and

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए।

अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: प्रोग्राम रंगी महफिल में आप सभी का दिल से इस्तकबाल, आप सभी का खैर मकदम। आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं और आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और डूब जाते हैं गजलों के आबशार में।

वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अक्सर याद आता है कि बचपन की वो अमीरी न जाने कहाँ चली गई। बचपन की वो अमीरी न जाने कहाँ चली गई, जब पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे। वाकई बचपन जिंदगी की वो खूबसूरत किताब, जिसके हर सफ़े पर मासूमियत की खुशबू होती है। मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, छोटी छोटी बातों पर हंस देना, हाँ वही लम्हे जो उम्र भर दिल में जिंदा रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाया करता है। वक्त आगे बढ़ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं और हमारे ख्वाब भी बड़े होने लग जाते हैं। जिम्मेदारियां न जाने कहाँ से आ जाती हैं और हम सब बचपन की गलियों से निकलकर जिंदगी की राहों में आगे चल पड़ते हैं। अजब कहानी है ये जिंदगी की, और ये जिंदगी कब हमें धोखा दे जाती है, ये जिंदगी न जाने कितनी बार हमें रुलाती है और हम भूल जाते हैं बचपन की वो गलियां, बचपन की वो मुस्कुराहट, और बस जिंदगी के पेचोखम में उलझ से जाते हैं।

दिल का क्या है जनाब, ये तो अक्सर व बेशतर न जाने कितनी बातों पर रंज करता है, एहसास करता है, और शायद

हम कभी लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। काश कोई समझ जाए इस खामोशी को। वाकई इस खामोशी में न जाने कितने सवाल और कितने जवाब होते हैं। इस दिल का हाल होता है, वो कहते हैं ना, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता।

ये करम, ये मेहरबानियाँ, ये मोहब्बत, ये जस्तजू, यही तो है ज़िंदगी का सरमाया। मोहब्बत दोस्तों सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की खुशी में मुस्कुराने का एहसास है। ये वो रिश्ता है जो दिल से शुरू होकर रूह तक पहुंच जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसे महसूस करें, इसका अंदाज़ा करें। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि इसमें कहीं ना कहीं हमेशा हमारे दिलों में मोहब्बतों का हमेशा बसेरा रहे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत शेर के रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है, या इधर परवाना आता है।

0: हैं।
1: आज जब फुर्सत पाई थी आज उसे फिर याद किया, बंद गली के आखिरी घर को खोल के फिर आबाद किया, बंद गली के आखिरी घर को खोल के फिर आबाद किया।

हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। जी हाँ, यही है वो मोहब्बत जिसके लिए हर इंसान तरसता है और जिसकी ज़िंदगी में ये मोहब्बत है, यकीनन उसे इसकी कद्र करनी ही चाहिए। और जनाब, हम आप सब की मोहब्बतों की भी कद्र करते हैं, दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। पंकज है हमारे साथ अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं कार्यक्रम रंगे महफिल बहुत बढ़िया कार्यक्रम, प्रस्तुति और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, ये दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो, गज़ल बहुत ही अच्छी लगी। चलिए जनाब, प्रोग्राम आपने पसंद किया और जगजीत सिंह की आवाज़ भी आपको बेहद अच्छी लगती है, इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं एम राजकुमार हैं, लिखते हैं होश वालों, और आगे आपने लिखा है वाह वाह क्या बात है। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आदाब, हम भी सुन रहे हैं, गज़लें पसंद आ रही हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और बढ़िया लिखा है, किसने लिखा है आपने दोस्त, अपना नाम नहीं लिखा, अपनी आपने जगह नहीं लिखी कि आपने कहाँ से हमें मैसेज किया है, बट बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं, मनीष जुड़ गए हैं,

जली से लिखते हैं कि आप बहुत अच्छी पोइटेस हैं। तो दोस्त, मैं पोइटेस कहाँ हूँ, ये तो आपसे जब हम मिलने आते हैं, आपसे हम बात करने आते हैं, तो यकीन मानिए कुछ अच्छा कहने को जी चाहता है, कुछ अच्छा आपकी बातें सुनने को जी चाहता है। लिहाजा ये जो बातचीत का सिलसिला है, हम तो चाहते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहे, और ये जो मोहब्बतों का कारवां है इसे कभी भी ये कहना चाहिए कि रुके ना ये कारवां, और बस ऐसे ही जो हमारी मोहब्बत का कारवां है यूं ही चलता रहे। तो आइए मोहब्बत की नज़र करते हैं ये गज़ल।

वाकई जनाब, मोहब्बत की जो रुदाद है, ये भी न जाने कितने रंगों के साथ हमारे सामने होती है। आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमा हो, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे है, नजरों को झुकाए तो शिकायत सी लगे है। ये भी एक खूबसूरत रंग है मोहब्बत का।

हाय वो राज मोहब्बत जो छुपाए न बने, हाय वो दाग मोहब्बत जो उभरता भी नहीं। ये दाग मोहब्बत और ये राज मोहब्बत कुछ ऐसे एहसास हैं जिन्हें सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो बेहद किसी से मोहब्बत रखते हैं, जिस तरह से आप सब हमसे मोहब्बत रखते हैं और हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो हमारे साथ हैं मनीष, है हमारे साथ, लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है और चाहता है कि ये वक्त यहीं रुक जाए। काश ऐसा हो जाए, लेकिन वक्त का काम आगे और आगे बढ़ना है। और जयंत हमारे साथ हैं पटना से, लिखते हैं तलत अज़ीज़ का सॉन्ग। तो जनाब तलत अज़ीज़ को अभी थोड़ी देर बल्कि थोड़ी ही देर पहले, क्यों, अभी हमने जो गज़ल सुनवाई आपको, खूबसूरत हैं आँखें तेरी, ये तलत अज़ीज़ साहब की ही आवाज़ में है। और रंगी महफिल में आपको प्यार भरा आदाब नमस्कार। आदिल कमर गुन्नौर यीशु लिखते हैं हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोग्राम सुनने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, प्रोग्राम सुनते हैं और जो भी हमारी गज़लें सुनते हैं जो हम यहाँ से प्ले करते हैं उसे आप हम तक फिर से पहुँचा देते हैं, बहुत शुक्रिया। ये भी आपका एक अंदाज़ है मोहब्बत का जनाब। और प्रकाश तिरसुनिया है भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ से, ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल आशा भोसले की खूबसूरत आवाज़ में, जितना सुनो ये आवाज़ से जी नहीं भरता और भी सुनने को जी चाहता है। एक एक हरकत और ठहराव कमाल की गायिका थी आशा भोसले जी, विनम्र श्रद्धांजलि। बिल्कुल आपने सही लिखा है, ऐसी जो शख्सियत होती हैं, ऐसी जो आवाज़ें होती हैं वो बार बार नहीं आतीं, और जब तक कला प्रेमी यहाँ मौजूद रहेंगे, जब तक उन्हें सुनने वाले मौजूद रहेंगे, संगीत को पसंद करने वाले लोग मौजूद रहेंगे, तब तक ये शख्सियत अमर रहेगी। बहुत शुक्रिया। और फारूक अली ख़ान साहब हैं, आप बहुत ही उम्दा प्रोग्राम पेश करती हैं, आपको अच्छा लगता है। और लिखते हैं कि आपको न जाने कहां कहां सुना जाता है और सरहदों के पार भी आपको लोग सुनते हैं। चलिए जनाब, अगर आपको अच्छा लगता है और लोग सुनते हैं तो मेरा सबको दिल से शुक्रिया अदा मैं करती हूं। और यकीन मानिए कि जब आप सब हमारी ये कहना चाहिए कि हौसला अफजाई करते हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम आप तक कुछ और अच्छा और कुछ बेहतर पहुंचा सकें जिसमें आप सुकून का एहसास कर सकें। बहुत शुक्रिया और थैंक यू मैम फॉर ब्यूटीफुल गज़ल प्रोग्राम, प्लीज़ पास ऑन माय मैसेज टू आकाश। आप सब समझ ही गए होंगे, तुम्बा हमारे साथ हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं, प्रोग्राम पसंद कर रही हैं, और आकाश को आज फिर उन्होंने मैसेज लिखा है। लेकिन हम तो चाहेंगे तुम्बा कि कभी आप हमें ये भी बताएं कि आकाश से आपका रब्ता, यानी आप कॉन्टैक्ट में उनके हैं या नहीं हैं, वो प्रोग्राम सुनते हैं या नहीं हैं। चलिए जनाब, आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं रितु बत्रा हूँ, दिल्ली से गोपाल पार्क में रहती हूँ, प्यारी गज़ल सुनकर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, हो जाती हूँ, माफ़ी चाहूँगी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए रितु। और रात को जागना कैसे छोड़ दें, प्रोग्राम आपकी याद आती रही, सुनने से महरूम रह जाएंगे, फारूक अली ख़ान साहब लिखते हैं। लेकिन इसके बाद हम चाहेंगे कि आप पूरी नींद लें, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। शो पसंद है, प्रदीप हमारे साथ हैं, अनंत कृष्णन अय्यर मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और अब वक्त का इशारा कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ एक और मुलाकात का, तो बहुत जल्द मिलूँगी आपसे। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतों की चिराग ऐसे ही जलाते रहिएगा। फिलहाल गुड नाइट, शब बख़ैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे।

किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात 0 शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेंचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। वहीं खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। स्वागत है आपका जीरो आर शो में।

मैं दीप्ति पाठक निधीश रहूंगी आपके साथ अगले एक घंटे तक और सुनवाऊंगी आपको यूं ही खूबसूरत दिल को छू जाने वाले गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो
1: समझ नहीं पाते कि करना क्या है,
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

विंध्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

इसी के साथ जीरो आर शो से हमें दीजिए इजाजत। रात्रि 1:05 पर आपसे फिर मुलाकात होगी इन द प्रोग्राम सुहानी रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगी। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री

चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के तहत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि सोने के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकरण 100 किलोग्राम की अधिकतम छूट योग्य मात्रा के अधीन जारी किया जाएगा। निदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के तहत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। उनसे हर 3 घंटे में मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। सुहानी रात में आपका स्वागत है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत

सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। वहीं आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। कुछ खास नगमे लेकर हाजिर हैं हम, लेकर प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भाई बद्दूर, भाई बद्दूर, अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बद्दूर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरो स्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिक विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महाआवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। वहीं खेलों में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर 201 रन का लक्ष्य पार कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:05:54 और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो लीजिए, आइए सुनते हैं ये कुछ खूबसूरत से गीत मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मिडनाइट मेलोडीज के अंतर्गत श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे और ये गीतों का आपने आनंद लिया। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री आज संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है।
1: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र के सतारा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सम्मेलन और महा आवास अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होंगे। श्री चौहान योजना के अंतर्गत निर्मित 5 लाख घरों के गृह प्रवेश भी कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। इस चरण में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। इस योजना के अंतर्गत आभूषण निर्यातकों को कच्चे माल का आयात शून्य शुल्क पर करने की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने सभी प्रथम आवेदकों के विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिससे उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का सत्यापन किया जा सके। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटों में 111 लोगों से अधिक की मौत हो गई, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों

वहीं गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजित ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़। और स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:05:52। और साथियों, ये है समय आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सारेगामा का। तो लीजिए, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। अरे अभी तो पार्टी शुरू।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ।
4: नौ बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।